0: कैसी खौफनाक आग है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह ब्रादान पहुंच गए, जल्दी करें जल्दी करें।
2: उस दिन जब तुमने अपने गंदे मुंह से हिलाल का नाम लिया, कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मेरे हिलाल तक पहुंचने की, तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि मेरे शौहर की चुगली करो।
3: अपने अमीर इब्ने जियाद से कह देना कि मेरे दामाद का दिमाग खराब हो गया है, मेरा कत्ल ही उसके हक में बेहतर है।
1: अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत में मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूँ।
4: इस कदर हराम लुकमा खाने वाली कैसे हमें नजर नहीं आई,
2: इस बार फर्क है।
3: क्या फर्क है?
2: इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो। कबूल कर लिया।
0: ये चोर आखिर कौन था?
4: सामिया, हिलाल की माँ।
1: कूफे वालों की बातों को सुनो लेकिन यकीन हरगिज मत करना।
2: सही फरमाया, लेकिन इस बार लोगों की बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। आपका बेटा कर्बला में है।
4: तुम्हारी बेटी मेरी माँ का हाथ पकड़कर भगा ले गई, लेकिन वापस नहीं आई, ना ही कोई खबर आई। अब तुम हकीकत बता दो और मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना सबके सामने तुम्हें जलील कर दूंगी।
0: बाहर निकालो इसे।
5: नईम, नईम, नईम, इस आदमी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला।

0: क्या असल बात बताओ और मेरी माँ को वापस पलटा दो, वरना देर नहीं लगाऊंगी तुम्हें रुसवा करने में।
1: इसे बाहर कर दो।
0: मैं तुम्हारी नियत से बाखबर हूँ। क्या तुम्हारे घर वाले भी जानते हैं? बताओ मुझे। अगर मेरी माँ का पता बता दो तो ठीक है, वरना खुदाए काबा की कसम तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी।
1: तुम्हारा जो दिल कर

0: बाहर निकालो इसे।
1: बाहर
2: चलो। नहीं, नहीं, नहीं। इसी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला। इसी मर्द ने मेरे भाई की शादी के वक्त तुम्हारे बाप के हुकुम से तुम्हारी बीवी को तिजारत खाने में ले जाकर मार डाला।
1: ज्यादा ना बोलो औरत।
0: खामोश हो जाओ झूठी औरत, डूब मरो। झूठ बोल रही है ये।
2: सुना तुमने बहादुर आदमी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया। पता है तुम्हें, तुम्हारी बीवी के कत्ल का हुक्म दिया।
0: बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इसे।
2: तुम्हारे बच्चों को यतीम किया है इसने।
0: बाहर निकालो।
2: झूठ
0: बोल रही है ये, एकदम झूठ बोल रही है। बाहर निकालो इसे।
3: आराम से,
2: मेरी माँ का।
0: बाहर कर दो इसे।
2: मुझे
0: देखा, यही सुनना बचा था कि हमारे ऊपर औरत के कत्ल का इल्जाम लगाया जाए। इनास, ये क्या हुआ?
2: नायला, मेरी माँ कहाँ है? बताओ मुझे नायला, मेरी माँ कहाँ है?
4: शांत हो जाइए, बस कीजिए।
2: चिल्लाने से मेरी माँ कहाँ है नायला?
4: नहीं, क्या ये सच कह रही है? तुम्हारी बीवी को इसी तरह कत्ल किया गया है, ये तुमने किया या बाबा ने? बोलो। फिर इसने सही कहा है। आप कैसे इंसान है बाबा? घर में रहने वालों के साथ आपने ऐसा किया? मुझे मक्का के रास्तों में बेवा कर दिया, बेटे की सौजा को कत्ल कर दिया। मेरी माँ को कब कत्ल करने वाले
0: हैं?
4: खतरनाक है, खतरनाक।
0: तुम भी सच मान रही हो ना?
5: मुझे अम्मी के पास जाना है।
4: तुम पर कुर्बान हो जाऊं, ऐसे मत रो। झूठ बोला है। इसकी माँ भी तुम्हारी माँ की तरह गायब हो गई है। वो हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रही है ताकि उसे तलाश कर सके, इसीलिए झूठ बोल रही है। मेरी जान, ऐसे मत रो। झूठ बोला है उसने, यकीन मत कर।
5: तो अब्बू ने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? वो सच कह रहे थे।
4: उसने ऐसे ही कहा है।
5: मुझे यार डर लगता है, मुझे दादा से बहुत डर लगता है। मुझे इस घर से ले चलो, अब्बा के पास ले चलो।
4: ठीक है, मैं वादा करती हूँ, तुम रो मत मेरी जान। ठीक है, अभी तुमको ले चलती हूँ। मत रो बेटा।
0: तुमने भी यकीन कर लिया ना? जो भी इस घर में घुस आएगा तुम सबकी बात पर यकीन कर लोगी, सिवाय मेरे।
4: अगर ये झूठ नहीं है तो बताओ तलमा कहाँ है? बताओ कहाँ है वो?
0: अगर मैं जानता होता तो उसका सर काम कर देता। इसमें शक ना करो, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। अगर जाना ही है तो तुम यही रुको, मैं खुद चला जाता हूँ।

0: कौन सी जगह है?
1: नैनेवा। क्या मेहमान नवाजी है नैनेवा में? इससे ज्यादा थे, बीच रास्ते में कुछ फरार हो गए। अगर आपका हुक्म हो तो उनके लिए फरमान जारी कर दिया जाए कि उन्हें कहीं अमान ना दिया जाए, ना खुद उन्हें ना उनके खानदान वालों को। अलवान बिन हज्जाज कहाँ है?
2: उस तरफ।
1: मेरे वापस आने तक यहीं रहना।
3: आज की रात पहली बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जनाब बिन हज्जाज। जब भी मैं कूफे पलटने का इरादा करता हूं तो किसी बहाने से रोक लिया जाता हूं। मुझ पर खाने पीने और सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, मैं इससे ज्यादा और यहां नहीं रुक सकता।
4: मरहबा, देखो कौन आया है। इब्ने आहद, खुश आमदीद। हक यह है कि मैदान तुम्हारे बिना खाली है जंगजू। इतना गुस्सा कर रहे थे, देखो गैब से गवाह आ गया। जो खत लेकर आए थे उसमें लिखा था कि तीरंदाजी में तुम कूफियों के दरमियान मशहूर हो।
1: कूफे का वाहिद तीरंदाज, दुख्तरे औहद का उस्ताद, औहद का दामाद, कम मशहूर नहीं है जनाब।
4: खत में ताकीद थी कि यहां रुको और उमर इब्ने साद के लश्कर में खिदमत करो। इस्लाम का सिपाही बनना मुबारक हो हिलाल, ये पहन लो।
1: मुबारक हो।

अल्लाह, ए रहम करने वाले, ए मेहरबान खुदा, तू इस बात का शाहिद और नाजिर है कि बगैर तहारत और वुजू के मैंने अपने बेटे के मुंह में लुकमा नहीं खिलाया। माना मैंने नमाज शब में तेरी बारगाह में इल्तिजा नहीं की कि मेरा बेटा कभी जालिम और जाबिर का हम नशीन ना बने। ए खुदा, कहां मुझसे खता हुई, कहां मैंने गलती की है। मैंने हमेशा अपने बेटे का शिकवा किया लेकिन कभी भी उसकी तरबियत में कोताही नहीं की और तेरे फजल व करम पे शक नहीं किया। मीसम ने सच कहा था, मीसम कहता था सामिया खुदाई तदबीर का इंतजार करो। मैंने नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। खत लिखा और खुद को ही परेशानी में डाला और अब तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। खुदाया, खुदाया, ए खुदा मेरी मदद कर। ए खुदा मैं तेरी पनाह चाहती हूँ खुद से। ए खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कि माबूद मैंने तुझसे गफलत की। ए खुदा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे या अली, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। ए अली, आपकी मजलूमियत और हक्कानियत मैंने महसूस की है, या अली मेरी शिफात कीजिए। ए खुदा मुझे माफ कर दे।

0: मेरे बेटे इस्माइल, मेरा हिलाल, मेरे जिगर का टुकड़ा उसका सरतन से जुदा हो जाए, लेकिन वो किसी मजलूम का खून ना बहाए। ऐ खुदा मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा ताकि तेरे करीब हो सकूं। खुदाया, ऐ खुदा मेरी मदद फरमा।
1: काश कि मैं मर गया होता और ये चंगे लिबास पहनने का वक्त नहीं आता।
2: क्यों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो? घर वापस चले जाओगे, डरने की जरूरत नहीं है।
1: विनोहद, अगर आज भी तुम अपनी बात
2: तुम पर... घर वापस चले जाओगे ना कि नायला के पास?
1: ठीक है नायला, नायला, मैं पहले ही इस जहन्नुम में चल रहा हूँ।
3: मैं इंतजाम करता हूँ जी।
2: हकीकतन जनाब इब्ने हज्जाज, एक अमानत लेकर आया हूँ जनाब इब्ने साद के लिए।
4: आधा लश्कर मैदान जंग छोड़कर भाग गया इब्ने औहद, तुम्हारे अंदर चंद सिपाहियों को रोकने की भी सलाहियत नहीं है कि किस अहमक ने तुम्हारे हवाले अमानत की है?
2: खुदा का शुक्र कि तुम्हारी जैसी बहादुरी मुझ में नहीं है। मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं बगैर खौफ के गुफ्तगू कर सकता हूं।
4: अस्तग़फिरुल्लाह, क्या अमानत लाए हो?
2: नैनेवा की तरफ लश्कर लेकर निकलने से पहले मेरे हवाले एक खत किया है।
4: कहाँ है?
2: चूंकि अमीर ने मुझे अमानतदार समझा था, लिहाजा मैं अपने हाथों से यह अमानत तुम्हें दे रहा हूं।
4: कोई जरूरत नहीं, जंग का मैदान तुम्हारे सुकून की जगह नहीं है।
2: बेवकूफ आदमी,
1: मैं इसीलिए आया था कि दोबारा कूफे पलट जाऊं। नायला की कसम, अगर मुझे कूफे वापस नहीं भेजा तो मैं ऐसी जंग में अपनी जान दे दूंगा जिसका इल्जाम तमाम लश्कर के सर आएगा।
2: बकवास बंद करो, मैंने कहा कि अगर अभी खामोशी इख्तियार कर लो, जंग शुरू होने से पहले तुम्हें रवाना कर दूंगा।
1: अब तक जितना मैंने तुम्हें देखा है, कोई अहमक ही होगा जो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा।
5: बाबा, अब खत्म हो गया।
1: बच्चे को क्यों कर्बला लाए हो?
2: जरा उस तरफ जाओ, वहां खाना भी है और पानी भी।
6: बच्चे किनारे हटो।
7: आखिरत की सजा का खौफ मत करो, ये ठीक नहीं। वहां बख्श दिए जाओ, इत्मीनान से इसके सर को तन से जुदा करो।
8: डर नहीं ना। आपने कहा कि इसका खून हलाल है तो हलाल है।
7: हलाल?
8: लेकिन माफ कीजिए, मुश्किल ये है कि मेरा दिल बहुत बहुत कमजोर है।
7: जरा फिर से।
8: मैं हरगिज इस काम को अंजाम देने की ताकत नहीं रखता।
6: खून से डरते हो?
8: थोड़ा सा।
7: घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त, दो बार सर जुदा करोगे तो आदत हो जाएगी।
8: नहीं, मैं तमाम मुकद्दसात की कसम खाकर कहता हूँ कि यह काम मुझसे नहीं हो सकता।
6: यहाँ क्या कर रहे हो बुज़दिल बदबख्त इंसान?
8: सबको आने का हुक्म दिया गया था, किसी को इख्तियार नहीं था। कोई माल गनीमत लेने आया था तो कोई आया था इनाम हासिल करने के लिए। मैं गुलामों को बेचता हूँ, गुलामों को। और तुम सब जिहाद का सवाब लेने के लिए

0: भी इसीलिए आया हूँ कि कनीज वो गुलाम को लेकर यहाँ से जाऊँ और उन्हें बेच दूँ। बस
1: उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, सब जंग के लिए आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी
2: चलो।
3: जो आपने कहा वो आपका हुक्म था या खत में लाया हूँ उसमें फरमान था?
1: मेरे अमीर इब्ने ज़ियाद का हुक्म खुद मेरा हुक्म भी है।
3: बस मैं लश्कर को लेकर जाता हूँ फुरात के रास्ते को बंद करने।
1: तुम भी हमारे साथ रहो फुरात के रास्ते को बंद करने के लिए, अपने कमांडर को भी साथ लेते आओ।
3: जसारत ना हो लेकिन इतनी तलवार चलाने वालों के बाद पानी बंद करना मेरी नजर में सिवाय वक्त की बर्बादी के कुछ नहीं। अगर हमला कर दें तो जोहर से पहले ही उनका काम तमाम हो जाएगा।
4: सुना है कि उनके काफिले के ज्यादातर लोग औरतें और बच्चे हैं, अगर फुरात का रास्ता बंद कर दें तो सब मारे जाएंगे।
1: आज का दिन अमीरुल मोमिनीन उस्मान के खून का बदला लेने का दिन है। हम वही काम करेंगे कि सब प्यासे मर जाएं।
3: खुदा उसे माफ करे।
4: हुसैन इब्ने अली ने तो कुछ नहीं किया था।
1: उनके बाद बाप का बदला उसके बेटे से लिया जाएगा।
4: वैसे तुम तो जनाब हानी के साथ थे ना? मैंने सुना है कि उन दिनों अली असलन मदीने में मौजूद नहीं थे।
1: खामोश हो जाओ। इतने साथ के सिपाहियों का लिबास पहनकर तुम अली की तरफदारी बिल्कुल मत करो।
4: एक तरफ अपने लश्कर की कसरत पर इतना फक्र है और दूसरी तरफ पानी बंद करने की तैयारी। वक्त पड़ेगा तो तलवार भी चलाओगे।
1: जंग तो होना ही है बच्चे। जो भी हमारे दीन के मुकाबले में आएगा और बैत के लिए सर नहीं झुकाएगा कत्ल कर दिया जाएगा।
4: कौन सा दीन?
3: हिलाल, एहतियातन पानी बंद करने के बाद शायद वो लोग बैत के लिए सर खम कर दें और हमारे दरमियान जंग ही ना हो। सलाम हो हमारे अमीर इब्ने ज़ियाद पर।
1: क्यों ऐसी बात कर रहे हो नईम?
3: क्यों
1: क्यों? इब्ने ज़ियाद ने यजीद को सर देने का वादा किया है। जो लोग खैमे के बाहर हैं वो सब जमीन और माल गनीमत के लालच में यहाँ आए हैं। अभी कुछ मिला नहीं और कह रहे हो जंग नहीं होगी?
5: अरे लोगों, आज तुम लोगों ने जिसका रास्ता रोका है जानते हो वो इस सरजमीन पर रसूल खुदा का तन्हा फरजंद है। क्या तुम्हारे दरमियान में कोई एक ऐसा है जिसने हमारे इमाम से कोई खता देखी हो सिवाय मेहरबानी मोहब्बत और दिलसोजी के, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात को हल करने में गुजार दी? अगर आज वो इस सरजमीन पर मुश्किलात में घिरा है तो तुम्हारी दावत पर आया था वो। खामोश क्यों हो सुहेल? अबू हुनैन, अभी तुम्हारे खुतूत की स्याही खुश्क नहीं हुई किस तरह तुम लोग आले रसूल पर तलवार खींचे हुए हो।
1: सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना चाहिए। झूठे मक्कार इंसान, वो चाहता है कि तुम्हारे ईमान को छीन ले।
5: वाह वाह, अम्र बिन हज्जाजे जुबैदी, शहीद हानी बिन उर्वा की जौजा के भाई, कहां तुम और कहां ये अबा अब्दुल्लाह के मुखालिफों की सफ़े?
1: सब जानते हैं कि मेरी और हानि की राह एक दूसरे से जुदा है।
5: अगर रास्ते अलग हैं तो फिर खत क्यों लिखा, क्यों वादा किया? बहते हुए दरिया, फलदार दरख्त, बिन हज्जाज, क्या तुमने नहीं कहा था कि दिल आपके इंतजार की ताकत नहीं रखता?
1: झूठ बोलता है झूठा मक्कार।
5: अगर मर्द नहीं हो और मदद नहीं कर सकते तो कम अज कम अली के शियों से सीखो कि वो सब बयाबान पहाड़ों में जाके बसे ताकि इमाम के मुकाबले तलवार न उठे। अगरचे इनमें भी मर्दानगी नहीं थी, मदद नहीं की, फकत दुआ के लिए हाथ उठाया, अलबत्ता ऐसी दुआ जो ना कबूल होगी न उसका फायदा है। वो चले गए ताकि कम अज कम आले रसूल के दिलों में वहशत और खौफ पैदा ना हो सके।
6: किसके बारे में कह रहे हैं जनाब हबीब? आपकी आवाज तो सुन रहा हूँ मगर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
5: वादे की वफा, मेहमान नवाजी, मर्दानगी हो आजादी, शाबाशी हो तुम लोगों को। क्या हुआ कि सुन्नत पैगंबर तुम्हारे लिए नाश ना हो?

0: हो गई।
1: आपने देखा नहीं है कि किस तरह मखालिफों के सर को तन से जुदा करते हैं, उनकी सालाना इमदाद को रोक देते हैं, हत्ता कि औरतों और बच्चों किसी पर रहम नहीं करते।
2: मत करने दो, ऐसा मत करने दो कि तुम्हें हक के रास्ते से जुदा कर दे।
3: हम सब मजबूर हैं, हम सब लश्कर को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन लश्कर को छोड़ने का अंजाम बहुत बुरा होगा।
4: ये कहे ना कि इब्ने ज़ियाद ने तुम्हें और दूसरे कबीले के लोगों को जबरदस्ती जमा कर लिया है, ये फरजंदे रसूल खुदा के मुकाबले कोई काबिले कबूल वजह नहीं हो सकती। मैं उस दिन को देख रहा हूँ कि रोजे महशर तुम होगे और तुम्हारी शर्मिंदा निगाहें उनकी माँ फातिमा जहरा की निगाहों के सामने होंगी।
5: अगर हुसैन इब्ने अली हमारी भलाई चाहते हैं तो कहो कि तलवार ना उठाएं ताकि उनके नाना की उम्मत एक नई जंग से निजात पाए।
4: नहीं, आज उम्मत के लिए इमामत को साबित करने का दिन नहीं है, मगर पूरी उम्र आजाद जिंदगी नहीं गुजारी।
3: क्या पूरी जिंदगी गुजार दी है तो एक दिन और सही।
2: तुम लोग शैतानी बातों पर बिल्कुल कान न धरना ताकि तुम्हारा जहन उसके बातिल ख्यालों में गिरफ्तार ना हो। कसाब या कसाब,
6: कसाब या कसाब, कसाब या कसाब, कसाब या कसाब,
4: कसाब या कसाब।
7: बहुत हुआ इससे ज्यादा पकड़ी, अब मेरे वापस जाने का वक्त आ गया।
8: अभी रुको, फिलहाल जैसे सभी कर रहे हैं वैसा, बिल्कुल वैसा ही करो।
4: कसाब या कसाब।
7: बहुत देर तक उन लोगों के साथ रह चुका हूं, इन लोगों की मक्कारी को अच्छी तरह जान गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
4: कसाब या कसाब,
2: खामोश, अपने अंजाम से डरो।
8: यही रुको,
9: क्या देख नहीं रहे हो हिलाल के खिलाफ तलवार उठाई है? क्यों कुछ नहीं करते?
8: मैंने कहा सब्र करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। मुझसे इस वक्त कुछ नहीं हो सकता।
9: ठीक है, आप ऐसे ही खड़े रहें।
10: कसाब या कसाब, कसाब या कसाब, कसाब या कसाब।

0: आपके मेहमान आए हैं जनाबे अहद।
1: बालिया, तुम तो शाम गई थी।
2: तुम समझते हो कि तुम बहुत होशियार हो? तुम्हारे आसपास की औरतें मेरी मुट्ठी में हैं। बेटियों का सौदा करने वाले बेगैरत।

0: एक बार फिर तुम्हारे खानदान का खून उसकी रगों में जोश मारने लगा है, और ये लड़की भी तुम्हारी और अपनी माँ की तरह इतना ज्यादा हराम माल हमारे दस्तरखान पर ले आई कि अगर मैं उसके बदले अपने तमाम माल को सदका दे दूं और बची हुई उम्र को रोजे में गुजार दूं ताकि बदन का गोश्त हराम माल से पाक हो जाए, तब भी मुंह से बू नहीं जाएगी। इस तरह का तैयार किया हुआ जहर भी अब तुम ही पियो, तुम और तुम्हारी चहेती। मैं बेगैरत हूं, मैं बेगैरत हूं कि इसको कत्ल करने की ताकत नहीं है मुझ में, मैं बेगैरत हूं कि तुम्हारे पास इसकी इल्तिजा लेकर आया हूं। तुमने मुझे खुद फंसाया है, अब तुम खुद ही इससे निजात दिलाओगे।
1: अल्लाह अकबर, देख रही हो, देख रहे हो कि खुदा ने नेमत किसे अता फरमाई है, बताओ मैं क्या करूं।
0: कुछ लोगों ने इस वाकये को आधा अधूरा सुना है और एक दूसरे को बता रहे हैं। खुदा की कसम, अगर शियों को पता चल जाए कि वो जिंदा है तो मेरी निगाहों के सामने उसके सिर को कलम कर देंगे। कुछ ऐसा करो कि कूफे से चली जाए।
1: ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम अंधे हो गए अबू शमीन? कूफे के हालात नहीं जानते कि कैसे खतरनाक हो गए हैं?
0: तुम्हारी पहुंच बहुत है तभी फरियाद लेकर आया हूं मैं।
1: कूफे के हालात ऐसे नहीं रहे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ा सब्र करता और इस बहादुर लड़की की कद्र को समझता, के बाद तुम्हारे लिए इफ्तिखार और सरबुलंदी का सबब बनती।
0: जो औलाद राह हक को ना पहचाने वो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार नहीं हो सकती, हमारे लिए वबाले दुनिया व आखिरत है।
2: हक को नहीं पहचाना,
0: तुम हक के बारे में क्या जानती हो?
2: मुझे जानने की जरूरत नहीं है, यही काफी है कि आप जानते हैं कि उम्मत का क्या हाल हुआ है, नहीं देखते? बदबख्ती और इख्तलाफ का असली सबब वही है जिसके लिए आपने अपनी पूरी उम्र गरेबान को चाक किया, समझे आप?
0: तुम गोद में थी जब अली तख्ते हुकूमत पर बैठे थे, तुम्हारी गलती नहीं है कि उन्हें ना पहचाना। जो भी आले अली के खिलाफ काम किया गया वो बेनतीजा रहा, तुम्हारा फायदा खानदाने पैगंबर की नाबूदी में था।
1: अच्छा हुआ अबू शमीन मेरे पास गदाई के लिए आ गए, वरना मेरे सर को तन से जुदा कर देते।
2: आखिर आप कब इस बात को समझेंगे कि अंबियों की जन्नत मालो सर से बनती है, ना कि अदलो इंसाफ से? अगर मालो दौलत होगी तो जन्नत भी बना सकते हो, वरना ऐसे ही रह जाओगे।
0: ले लो नासबियों की मालो दौलत और इज्जत।
2: अगर अमवी बुरे होते तो शियाने अली में से किसी का हाथ गदाई में उनके सामने ना होता। तुमने कितने अलवियों को देखा है जो अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, बताओ मुझे।
0: अफसोस है मुझ पर, अफसोस है मुझ पर कि आले अली की अदावत हमारे दिमाग तक सरायत कर चुकी थी और उस समय मैं बेखबर
2: था। खुदा की कसम अपने किए पर मैं जर्रा भर भी परेशान नहीं हूँ।
0: निकल जाओ यहाँ से, अपने मुंह को बंद कर लो। किस चीज से पशमान नहीं हो, कत्ल से या किसी? छोड़ो मुझे,
1: चुप हो जा। आखिर मुंह से बात निकल गई, मेरे खानदान और कबीले को जो कहा मैंने कुछ नहीं कहा। उस शख्स के होते हुए दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, खुद तुम्हें कत्ल करके दफन कर देगा। तुम्हारा कूफे में रहना और इस दीवाने के घर रहना बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हें कूफे से निकलने की इजाजत खुद दूंगा। अगर तुम खुद मर्द होते तो पिछले सात के खौफ से तुम खुद भी कूफे में

0: सिपाहियों फरार हो रहे हैं, पकड़ो, वो फरार हो रहे हैं।
1: चलो चलो पकड़ो उन्हें, कोई भी भाग नहीं पाए। चलो
2: पकड़ो उसे, मत के जाने ना भाई।

0: अपने शबो रोज की कद्र समझो नायला, खुद से ही बैठो, उठो, रास्ता चलो, सो, अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो कैसे लिपटा हुआ है, उसे आराम मिल गया है, सुकून से सो रहा है, एकदम इत्मीनान से। जैसे ही नाव को काट कर जुदा करेंगे, खौफ और इज़्तिराब पूरे वजूद को घेर लेगा, जैसे जैसे तुम्हारा दिल तुमसे अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा हो और खाक में तड़पने लगा हो।
1: हिलाल के लिए शायद ऐसा हो, लेकिन आया के लिए फिक्र ना करें। मैंने उसे समझा दिया है, वो घर में है अपने दोनों बच्चों के साथ, सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: हातिब जान, तुमने कहा ना भूख लगी है, फिर खाना क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा खाना खा लो, चलो मुंह खोलो, चलो खाओ मेरे हाथों से।
3: बेमजा है, मैं नहीं खाऊंगा, हटाओ इसे, यहाँ से निकलो।
2: ये क्या किया?
4: यह क्या हो रहा है? अगर बच्चे को संभालना नहीं आता तो मुझे बोल देती, सारी चीजें फैला दी है। तुम इतना रो रहे हो हातिब, क्या हुआ है? सुबह से शाम तक रोते रहते हो, गले में तकलीफ हो जाएगी। देखो कितना गर्म है, बुखार है बहुत तेज। अगर तुम्हें सहमत ना हो और दरवाजा खोल सकती हो तो खोल दो।
2: देखती हूँ।
4: क्यों खाना नहीं खा रहे हो? इस तरह मर जाओगे बच्चे।
3: काश के मर जाऊं, अपनी अम्मी के पास चला जाऊं।
4: तुम्हारे लिए क्या करूं?
2: बानो,

0: कोई कासिद आया है, वो बात करना चाहता है।
1: तुम इसका ख्याल रखो। फरमाइए।
2: सलामुन अलैकुम। घर के किसी मर्द या बड़े से बात कराइए।
1: मैं बड़ी हूँ, फरमाइए।
2: जनाब के लिए मैं करबला से अहम खत लेकर आया हूँ, उन्हें देना चाहूँगा।
1: अभी वो घर में नहीं है, बाद में आना।
2: बाद में यानी कब? मुझे खत देने का हुक्म दिया गया है।
1: क्या कहा? खत कहाँ से लेकर आए हो?
2: करबला, मुझसे कहा गया है कि खुद उन्हें सौंपा जाए।
1: ना डरो, मैं उनकी जौजा हूँ, खत उन तक मैं पहुँचा दूंगी। फी अमानिल्लाह।
2: मेरा वजीफा है कि खुद उन तक मैं पहुंचाऊं। खातून, मेरी बात सुनिए।
1: ये
3: आहार, तुम्हारा खत आया है। शाबाशी हो, क्या मुसीबत आ पड़ी है हम पर। एक खुदा, आया ने सही कहा, 10 दिन से मैं यहाँ हूँ। अगर दोनों बच्चे मुझसे ये पूछे कि क्यों मेरी माँ को दफन किया है, अगर उन्हें मालूम हो जाए क्या मुसीबत उनकी माँ पर पड़ी है, तो मैं मर जाऊंगी। कुर्बान जाओ उस बेटी पर जिसने ना समझी में उस घर में कदम रखा। बाह नहीं है कि नाइला ने तुम्हें ऐसे बाप के घर में पनाह दी है।
4: बाबा घर पे नहीं है
3: ना? एक शख्स करबला से आया, मुझ में सब्र की ताकत नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद ये लाल की कोई खबर लेकर आया होगा, इसलिए मैंने ले लिया।
1: तुम्हारे दामाद इब्ने हनीफ का खून खलीफा के हुक्म की मुखालफत की वजह से जहाँ पर भी वो हो और जिस हालत में हो हलाल है, और उसकी किसी भी तरह से कोई भी मदद बिल्कुल ना की जाए।

ये तराना उस शफीक रहबर और पैकरे इल्म व अमल के नाम, जिसने जिंदगी भर हमारी उंगलियां थामे रखी और रुखसत होते हुए अपने लहू से हमारी बका की जमानत दी।

बिनत अहद नायला, अब तुम्हारे छुपने का वक्त है क्या? तुम्हें लगता है हुकूमत तुम्हारे जुर्म को भूल जाएगी? इस बार ना मुझे हया की फिक्र है और ना ही जवां मर्दी की। तोड़ डालो।

0: सरदार घर में कनीजों के अलावा और कोई नहीं है, वो सब गैर अरब हैं, वो जबान नहीं समझते।
1: जाओ तिजारत खाने की तलाशी लो, शायद घर वाले वहां छुपे हों। जल्दी करो।

0: साले तुम हो, यहां क्या कर रहे हो?
1: झूठा तो भुलक्कड़ होता है, मुझे लग नहीं रहा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे। देखो इसे, गौर से देखो इसे, क्योंकि ये ईमान फरोश और बेदीन है। इसने पहले अपने बहनोई को फांसी तक पहुंचाया और अब इमाम की नौबत है।
0: तुम ये बातें ऐसे कर रहे हो जैसे तुम वहां नहीं थे।
1: इत्तेफाक से मैं था और मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि जैसे ही हिलाल आजाद हुआ, अजम को फांसी पर चढ़ाया गया।
0: बासित की कहानी अलग है, उसके खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
1: अभी कुछ देर पहले मेरे कबीले के लोगों का खून बहाया गया है जो मुझे तुम्हारा कत्ल करने पर उकसा रहा है।
0: दुश्मन नकलिस्तान के पीछे लश्कर कशी कर रहा है और तुम अपना सारा जोर मुझ पर आजमा रहे हो।
1: तुम्हारा कत्ल मेरे दिल को ठंडक पहुंचाएगा। लानत हो तुम पर कि शिया की औलाद होकर इब्ने साद के लिए काम कर रहे हो।
0: मैं जबरन इब्ने साद के लश्कर के हाथों चढ़ गया हूं। खुदा की कसम, अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारे इमाम पर क्या गुजर रही है तो तुम इस वक्त वक्त बर्बाद ना करते। मेरा कत्ल करना चाहते हो तो जल्द से जल्द कर दो, मेरा काम तमाम करो और अपने इमाम की नुसरत के लिए दौड़ो। तलवार लेकर सिर्फ तकरीर नहीं करो।

0: पूरन मैंने ये लिबास पहना है।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: कूफे के अलावा जहाँ भी मुमकिन हो।
1: पहले तुमने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया और फिर एक बार भी उसके कब्र पर नहीं गए, और अब शहर छोड़कर जा रहे हो? कुछ अजीब नहीं लग रहा है?
2: खयानतकार की कब्र की ना ही ज़ियारत होती है और ना ही फातिहा पढ़ा जाता है।
1: अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए इतना ही बोझ होती तो उसके कब्र पर आंसू ना बहाते।
2: रहने दो सामिया बेटी, तुमने जो कहा मैंने वही किया।
1: नहीं, जो आंखें मैं देख रही हूँ ना ही उसमें गम है और ना ही खौफ। कुफा छोड़ने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा।
2: बेकार की बातें ना करो।
1: एक दलील, सिर्फ एक दलील दो कि तुम शमीम से नहीं मिले थे।
2: मैंने तुम्हारे लिए अपनी बेटी को खो दिया, इतना काफी नहीं है क्या?
1: इस वक्त शहर में हंगामा है। इब्ने ज़ियाद के लश्कर से लड़ने और चेहरे से नकाब उठ जाने के डर से भाग रहे हो?
2: मामला खराब ना करो और मुझे जाने दो।
1: जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता नहीं जाने दूंगी।
2: क्या कर रही हो तुम?
1: मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि तुम्हारा कोई दीनो ईमान नहीं है। इतना झूठ खुदा का खौफ करो। तुम्हें याद है फाजिल कि मैंने अपने शहीद शौहर बासित के खून की कसम खाई थी कि अगर तुम उसके कातिल का किसास नहीं लाए तो मैं इज्जत और आबरू भूल जाऊंगी।
3: अगर ज्यादा शोर शराबा करोगी तो तुम्हें भी वहीं पर भेज दूंगी जहां तुम्हारे शोहर को भेजा हुआ है, समझ गई ना तुम?
1: तुम जैसे पस्त कातिल से ताज्जुब की बात नहीं। ए लोगो, कहां हो? दौड़ो, मेरे शोहर का कातिल मिल गया है। शमीम, यही है वो।
2: क्या कर रही हो तुम? अगर तुम उसे कत्ल करना चाहती हो तो कत्ल कर दो, इतना शोर शराबा क्यों?
3: इससे पहले कि मैं सिपाहियों को आवाज दूं अपनी जबान को लगाम दो।
1: तुम क्यों जहमत करोगी? कहाँ हो ए इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों? आओ कि फाजिल जनाना लिबास में छुपा है और यहाँ से भागने जा रहा है। इस झूठे कातिल को इस शहर से फरार करना चाहिए क्या?
2: क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया?
3: चलिए चलिए।

0: साम्या, अगर तुम दीवानी हो चुकी हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नायला को अगर करबला जाने दिया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा।
1: ये उसी से कहो, मेरी नजर में भी अगर नायला कूफे में रहे तो बेहतर है।
0: अगर नायला मेरी बात मानती तो इस वक्त वो तुम्हारी बहू ना होती।
2: अगर आप दोनों को अपने बच्चों की इतनी पड़ी है तो मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र करने दीजिए, ताकि मेरा बच्चा भी अपने बाप का इंतजार ना करता रहे।
0: तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो?
2: खुदा ने नायला के झूठ को सच साबित कर दिया।
3: दादीजान, दादीजान!
2: उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
0: यहाँ क्या कर रहे हो तुम मेरी जान? हाँ,
3: इब्ने हुरैस और उसके सिपाही जबरदस्ती घर में घुस गए हैं, और अब वो सभी यहाँ भी आने वाले होंगे।
0: यहाँ
2: हमें ढूंढ रहा है?
4: बिनते आहद, तुम छुप नहीं सकती, हर जगह ढूंढो उन्हें।
0: इस घर का मर्द मर गया है क्या जो इस तरह दरवाजा तोड़ कर आ रहे हो? तुम्हारी तहजीब कहाँ चली गई इब्ने हुरैस?
4: हमने बहुत ढूंढा, कोई बड़ा नजर ही नहीं आया। शायद मर गया हो और हम बेखबर हो मोहतरमा।
5: सरदार, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ सामान और घोड़े हैं यहाँ।
4: हम माँ को साथ ले चलेंगे, हो सकता है बेटी खुद ब खुद हाजिर हो जाए।
0: क्या करोगे तुम, बताओगे?

0: मेरा इस तरह गुफा छोड़ना मुश्किल है, जबकि मैं आया और उसके दोनों बच्चों से बेखबर हूँ, बहुत मुश्किल है।
1: हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।
0: खुदाया मेरी मदद कर, चलते हैं।

0: साले, इससे ज्यादा अपने बाप को कब्र में अजियत ना पहुंचा। उस लश्कर के पास कसरत और हौसला है। वो जिस तरह खून और माले गरिमत के प्यासे हैं, वो किसी पर रहम नहीं करने वाले।
1: परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुदा की नुसरत उनके बंदों के लिए है।
0: कैसी नुसरत और कामयाबी! इमाम ही मोजेजे से अपनी जान बचा सकते हैं।
2: पिसरे साथ के लश्कर को शिकस्त देना इतना भी सख्त और नामुमकिन नहीं होना चाहिए। हम हमला करेंगे और बनी साथ के लोगों के साथ उनका काम तमाम कर देंगे।
0: तुम इस मखलिस्तान से बाहर नहीं निकले और नए नबा को दोबारा हासिल करने की सोच रहे हो। कितनी बार तुम लोग करबला के मुख्तलिफ रास्तों पर गए और उल्टे पैर वापस आ गए। मैं इब्ने हज्जाज के लश्कर से वापस आ रहा हूँ, सारे रास्ते बंद हैं।
1: इसने देखा कि इसकी जान तुम्हारे हाथों में है तो झूठ बोलने लगा। ये
0: खुदाया मुझे मौत दे दे, खुदाया मुझे मौत दे दे कि मेरा ईमान तन्हा है और ये लोग हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े। तुम लोग मुझे खत्म करके ये किस्सा तमाम क्यों नहीं कर देते?
3: शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारे दोस्तों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। गला सूख रहा होगा, लो पानी पियो।
0: फुरात का रास्ता बंद कर दिया गया है। इमाम और उनके असहाब पर पानी बंद कर दिया गया है और तुम मुझे पानी पेश कर रहे हो। ये कौन से दीन में है? मैं करबला से वापस आ रहा हूं, वहां बहुत बुरी हालत है। मुझ पर खुदा की लानत हो अगर मैंने पानी को हाथ भी लगाया, जबकि छोटे और शीरखार बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया गया है। लानत है मुझ पर। चलो, मैं बेदीन और काफिर हूं। देर हो जाए इससे पहले कम से कम तुम ही कुछ।
4: मैं क्या करूं?
0: मसले का हल यहां नहीं, कूफे में है। इब्ने ज़ियाद इस जंग को भड़का रहा है।
3: तो
0: उसका काम तमाम कर दें, फिर पिसरे साथ की फौज खुद ही बिखर जाएगी।
1: ये दीवानगी है, पागलपन है। कूफा के दारुल हुकूमत में घुसना, वो भी जब आजकल कूफा में कोई मदद करने वाला नहीं बचा, ये हिमाकत है।
4: खामोश!
0: कूफा में बहुत कम सिपाही और मुहाफिज बचे हैं, सब करबला भेज दिए गए हैं। तुम्हारी तादाद भी उतनी नहीं कि उन पर हमला कर सको। तुम सब मारे जाओगे, लेकिन उस मलून के कत्ल से पासा पलट जाएगा। फिर उसके तख्ते हुकूमत को उसके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। अगर तुम सब अपने इमाम की मदद के लिए आए हो तो कुछ करो, कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो महशर में हमसे ज्यादा कोई और शर्मिंदा नहीं होगा।

तुम्हारी मां के एहतराम की वजह से खोल रहा हूं। वो मीसम का जनाजा उतारने के लिए पूरी बहादुरी के साथ मैदान में हाजिर हो गई थी। उठो।

0: पैसा दिया और निकल गई।
1: आप उन्हें चाहे जितना भी पैसा दे दें, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, गुफा में तलाश कर रहा है, चलिए चलते हैं।
2: यहाँ खड़े क्यों हो? आज इस दरवाजे से निकलना नामुमकिन है। लौट जाओ।

0: तुम यहाँ से जाओ और फिर वापस ना आना, जैसे अबू शमीम की कोई बेटी थी ही नहीं।
1: अकेली मैं कहाँ जाऊँ?
0: हर सरजमी को कातिल और मुजरिम की जरूरत पड़ती है। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो जाओ।
1: आप कहाँ जा रहे हैं? ना कूफा में ठहर रहे हैं और ना ही मेरे साथ जा रहे हैं। बताइए कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे फिक्र है आपकी।
0: अगर मुझ में गैरत और आबरू होती तो मैं करबला जाता, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मैं डर रहा हूँ कि कहीं रोने के लिए भी कोई और जगह ना मिल पाए। मैं बयाबानों में जाकर दुआ करूंगा, शायद खुदा मेरी दुआ सुन ले और ये किस्सा बखूबी तमाम हो जाए।

0: रास्ते से हटो।
1: रुक जाओ, कहां जा रहे हो?
2: जनाबे हजाज की तरफ से इब्ने ज़ियाद के लिए एक असीर और लाया हूं।
1: तुम हिलाल बिन हनीफ हो?
2: बड़ी देर से पहचाना।
1: तुम्हारा नाम दुश्मनों और जंगी फरारियों में है। मुझे हुक्म मिला है तुम्हें अमान न दूं।
2: अगर मैं दुश्मन या काफिर होता तो कूफे में क्यों आता?
1: असीर को जिंदान में डाल देते हैं या फिर जनाब अम्र के हवाले कर देते हैं। तुमने आखिर कैसा असीर गिरफ्तार किया है जिसे सीधा यहाँ लेकर आए हो?
2: देखो इस शख्स को, इसी ने मीसम का जनाजा चुराया था, वही जिसे तुम और तुम्हारे सिपाही गिरफ्तार न कर सके। अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया हो तो वक्त बर्बाद ना करो।
1: रुक जाओ, तुम्हें कूफा में आने का हुक्म कब मिला?
2: कल रात।
1: यानी तुम चाहते हो मैं यकीन कर लूं कि बिन हिजाज को उबैदुल्ला के नखीला पहुंचने की खबर नहीं थी? या तो तुम यहाँ किसी मकसद के लिए आए हो ऐ फरार कमांडर? दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करो।
3: वो हिलाल है ना?
1: रुको नहीं, जाओ यहाँ से बाहर, जाओ
4: हिलाल,
1: सब लोग जाओ, यहाँ ना रुको।

0: एहतियात से नायला, थोड़ा आराम कर लो, आराम से।
1: मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा, लेकिन अगर उसे कोफा में गिरफ्तार कर लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
0: खौफ और हिरास को दिल में जगह ना दो। तुमने नहीं देखा उसने दरवाजे के सामने कैसे तलवार खींच ली और सिपाहियों को कत्ल कर रहा था।
2: घर नहीं है क्या?
0: मेरी बहू हामला है, थोड़ा आराम कर लें तो हम चले जाएंगे।
2: या अल्लाह, यहाँ मत रुकिए, जाइए यहाँ से।
0: उठो। नजदीक है, इससे पहले जब कूफा कूफा था और यहाँ हबीब, मीसम और हानी थे तो यहाँ शियों का इज्तिमा रहता था।
3: आखिर इमाम के बच्चों पर पानी क्यों बंद कर दिया गया? किस दीन मजहब में बच्चों पर पानी बंद किया जाता है?
1: अगर हम यहां रुके तो हमारा काम तमाम है।
0: तो कहां जाएं? कहां जाएं?
1: मैं एक ऐसा घर जानती हूं जिसमें एक अरसे से कोई नहीं है। चलो वहीं चलते हैं।
2: हाँ, चलो।
0: हाँ, चलो।

0: तशरीफ लाए, खुश आमदीद। घर में कोई नहीं है, तशरीफ लाए।
1: माजिद तुम आ गए, क्यों इतनी देर कर दी? तिजारत की क्या खबर है? माजिद सुनो, मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा था। ये काफिर और बेदीन चोर मेरे घर में क्या कर रहे हैं? निकल जाओ यहां से।
2: मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से।
1: ठीक है, अगर नहीं जा रहे तो हम सिपाहियों को बुलाते हैं।
2: सिपाहियों,
3: इसका कत्ल मुबाह और बाबरकत है। मैं एक मुद्दत से माविया के इस कातिल को कत्ल कर देना चाहता था।
4: मेरे भाई आराम से, हम जंग के लिए थोड़ी आए हैं। ये जो कोई भी है और इसने जो भी किया, लेकिन ये इसका घर है।
3: ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने तो इन लोगों का जुल्म अपनी आँखों से देखा है।
5: इस जैसे नजीस लोगों ने तो हमारी दुनिया को भी लूटा है, और ऐसे ही लोगों ने हमारे दीन को भी बर्बाद किया है।
4: शर्म करो, वही होगा जो मैंने कहा। जब तक हम लोग इस घर में हैं, ये मर्द मेरी पनाह में है। उठाओ इसे। यहां से ले जाओ इसे, मेरी नजरों के सामने से हटाओ। ले जाओ।
2: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे,
6: छोड़ दो मुझे,
2: मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। ना इलाह।

0: जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, एक दूसरे का ख्याल रखें और यहीं रुकें।
1: लेकिन उसके बाद क्या? हम यहाँ कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे?
0: अगर तुम्हारे जहन में कुछ हो तो बताओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि शहर में शियाने अली का आना जाना मना है? ना कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना नमाज और ना बाजार।
2: इन्हीं सब की वजह से हम लोग खाना नशीन हो गए हैं, वरना हम इस वक्त अपने इमाम के साथ होते।
3: इमाम ने हमारी फिक्र नहीं की और ये जंग मोल लेकर इतने शियों को खुद से महरूम कर दिया।
4: करबला के लिए अहलियत होनी चाहिए जो हमारे अंदर नहीं थी। जनाबे हबीब उसी दरवाजे से करबला गए।
0: बकौल मीसम, अगर वो

0: मोल लेकर इतने शियों को खुद से महरूम कर दिया।
1: करबला के लिए अहलियत होनी चाहिए जो हमारे अंदर नहीं थी। जनाबे हबीब उसी दरवाजे से करबला गए।
2: बकौल मीसम, अगर वो इमाम हैं तो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग बड़े बनकर उन्हें सिखाने लगते हैं।

0: तुम यहीं रुको, मुझे इत्मीनान रहेगा। मैं आहिया की खैरियत देखकर आ रही हूं, परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। रुकना जायज नहीं है, तुम अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मैं जल्द वापस आ जाऊंगी।
1: नहीं, नहीं, बेहतर है कि आपके पास रहे।

0: कोई फायदा नहीं, सात लोग इतने ज्यादा लोग से नहीं लड़ पाएंगे, ये नामुमकिन है।
1: मैंने ऐसे ही अपनी जान हजार बार खतरे में नहीं डाली है।
0: दुश्मन पर हमला करना खुद खुशी है।
1: दुआ करो कि कहीं देर न हो गई हो, 3 दिन से फुरात पर कब्जा है।
0: 3 दिन हो या 10 दिन, अगर हम इससे पहले भी पहुंच जाते तब भी कोई फायदा नहीं होता, हमारा बच के निकलना नामुमकिन है।
1: हम जिंदा बचने के लिए नहीं आए, इमाम की जान अहम है।
0: हमारी जाने इमाम पर कुर्बान, लेकिन मेरे साथ यतीम बच्चे भी हैं।
2: वो ना हम पर रहम करेंगे और ना ही हमारे बाद हमारे नामूस पर रहम करेंगे।
3: तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो बताओ।
1: रात होने तक सब्र करना होगा, दुश्मन से भी गलती होने की गुंजाइश है, पर रात में भाग जाना भी आसान है। मंसूबा वही है जो पहले था, तुम असीर हो और हम गुलाम पहुंचने वाले।
0: तुम्हारा मंसूबा अगर अच्छा और मजबूत होता तो हम लोग दरवाजे पर फंसते नहीं।
2: तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो जनाब? कूफा के मुहाफिज ने तो हमारा सारा झूठ पकड़ लिया। हम इब्ने ज़ियाद के लश्कर के बिल्कुल करीब हैं और हमारा काम तो तमाम है।
3: मंसूबा वही है जो हिलाल ने बताया, हम इसलिए नहीं आए कि जिंदा वापस जाए। इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने के लिए जान भी देनी पड़े तो हाजिर हूं।
2: मैं अब रुक नहीं सकता, उधर जंग छिड़ी है और तुम लोग जान बचाने की बात कर रहे हो।
0: मेरी भी समझ से बाहर है, अगर कोई अच्छा मंसूबा होता तो मैं रुक जाता, लेकिन इस हालत में इमाम की मदद की कोई उम्मीद नहीं। खुदा हाफिज़।

0: आपने सुना नहीं, यहां आने जाने पर पाबंदी है, आप जाइए यहां से, जाइए यहां से। क्या नाम है आपका, किस कबीले से हैं आप, आपका घर वर है या फिर गलियों में ही रहती है आप, कुछ बोलती क्यों नहीं, बेजुबान है आप, कहां, बगैर जरूरत के आने जाने पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, आप समझती क्यों नहीं।
1: काश के अपनी जान के डर से ही खड़ी रहती और कुछ नहीं करती, अपने बाप की जान का तमाशा देख रही थी ना, सामिया सही कह रही थी, बेटा नहीं दिया, मेरी बेटी को भी मुझसे ले लिया, इश्क ने तुम्हारी आंख और अकल दोनों अंधे कर दिए हैं, लानत हो तुम्हारे बाप की कब्र पर हिलाल, लानत हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अलग हो, नहीं, तुम्हारा गोश्त और हड्डी मेरे खून से है, तुम मेरी तरह हो, बल्कि हो बहू मुझ जैसी हो।
2: तुम्हें और तुम्हारी तरह के हर शख्स को देखकर मुझे घिन आती है, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं। जब भी मैंने आतिफ और अलवान की आंखों में देखा तो मुझे शर्म आई कि मेरा तुम जैसा बाप है, बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया आपने।
1: मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए जमीन पर जन्नत बनाना चाहता था।
2: जन्नत, मैं जहन्नुम में जा सकती हूं लेकिन तुम्हारी बनाई हुई जन्नत में नहीं।
0: अंदर ढूंढो, ढूंढो।
1: आ गए अम्र, किसी फरिश्ते की तरह आसमान से जमीन पर आ गए, आओ और मेरे हाथ खोल दो, इन काफिरों ने मुझ पर और नैला पर कोई रहम नहीं किया, आओ, अगर देर में आते तो मेरा खून बहा दिया गया होता, आ जाओ।
3: कहाँ है?
1: कौन कहाँ है?
3: मैंने पूछा वो कहाँ है?
1: कौन कहाँ है?
2: भाग गई।
1: कोई यहां था ही नहीं के भागता।
3: जिस दिन तुम सामिया को असीर करके ले गई उस दिन मुझे याद नहीं था कि औहद की बेटी

0: नाहेला, अम्र, अम्र सुनो, अम्र, हम दोनों को एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। आज तुम चालाकी करोगे और कल मैं एक खत के जरिए तुम्हारे पूरे कबीले को बर्बाद कर सकता हूँ। मेरी बेटी को गिरफ्तार ना करो।
1: तुम्हारा दामाद जंग से भाग गया और तुम्हारी बेटी शियों से मिल गई है। तुम्हारा खानदान बर्बाद हो गया है औहद, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से तुम्हारी इस ख्वाहिश को हम रद्द नहीं करेंगे। तुम्हारी बीवी को आजाद कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी मेरी तरफ से तोहफा है।
0: और मेरी बेटी?
1: लेकिन तुम्हारी बेटी फिलहाल अम्र के पास रहेगी।
0: उम्र, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मैं।
1: ले जाओ इसे।
0: नाइला, मेरी बेटी।
2: सब्र करें,
0: मैं बर्बाद।

0: दिन सरदार, मर्दों का लिबास आपकी खिदमत में हाजिर है। परेशानी की कोई बात नहीं है, ये लीजिए आप।
1: वाह वाह, शिकार खुद ही जाल में आ रहा है।
2: हम मंसूबा बदल रहे हैं, इब्ने ज़ियाद को मारकर सीधा कर्बला जाएंगे।
1: दूरी ज्यादा है, अगर निशाना चूक गया तो?
2: मेरा निशाना अचूक है।
1: तुम्हारा हाथ कांप रहा है हिलाल, निशाना चूक ना जाए।
2: अब तक बहुत देर हो चुकी है, हमें इमाम तक पहुंचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
3: वो पहुंच जाएंगे, जल्दी करो।
0: जनाब हबीब का कत्ल कर दिया गया है, तुम सब क्या कर रहे थे?
1: गलत निशाना लगा दिया।
0: पीछा करो, कहीं भाग ना जाए। देख क्या रहे हो, जाओ उनके पीछे।
2: जब तक ये लोग बदहवास हैं, मैं अधूरा काम पूरा कर दूंगा।
1: हवास?
4: Ah!

0: मुझे तुम्हारी पनागा और सुकून होना था, लेकिन मैं मुसीबत बन गया।
1: अगर माफ करने की बात है हिलाल, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं,

0: दो चांद एक जिंदगी से ज्यादा अहम है।
1: अगर दुनिया ने उसे मोहलत दी, उसने जिंदगी का मुंह देखा, तो खुदा करे वो तुम्हारे जैसा हो।
0: तुम रो क्यों रही हो? अब तो हम साथ हैं।
1: मेरे दिल पर एक ऐसा जख्म लगा है जो मुझे नहीं मालूम कहां से आया। मेरे आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है।
0: ये ना देखो कि मैं एक जंगजू हूं, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता।
1: एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिस दिन नायला से शादी के लिए तुमने हामी भरी, जिम्मेदारी की वजह से था या दिल से?
2: मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
1: ए भाई, करबला की कोई खबर है?
2: नहीं मालूम, मैं खबर हूँ कि उन्हें पानी दिया या प्यासा ही उन्हें कत्ल कर दिया। उनके बच्चे प्यासे ही थे, अल्लाह जाने क्या हुआ।
0: तुम भी करबला के लिए बेचैन हो? नायला,
1: नायला की जान,
0: मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे ये कभी नहीं बताया कि मैं अपने मौला अली के बाद तुम्हीं से इश्क करता हूं। ये फिरोजे का पत्थर बलाएं दूर करता है, आपके पास रहे तो अच्छा है।

0: नायला मेरी बेटी।
1: किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो।
2: इस्लामी फौज पर यजीद बिन माविया के मुखालिफों और दुश्मनों पर कामयाबी और कामरानी मुबारक हो। हम खुशी से बागी दुश्मनों की गर्दन उड़ाकर ही सुकून लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ऐसा भी हो जब ये गिरोह बिल्कुल मिट चुका।
3: लानत हो तुम पर, लानत हो तुम।

0: मुलाकात।
1: अम्र अम्र अम्र, उम्रो मेरा सारा माल तुम्हारा, तुम नायला को चाहते थे ना? मैं तुम्हें मोहम्मद के खुदा की कसम देता हूँ, मुझे कत्ल कर दो लेकिन नायला को छोड़ दो। अम्र अम्र, अम्र।